हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो हरि हरि हरि बोलो हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो हरि नित्य नित्य।

वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य जप